इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM हर दिल।

आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM। रेडियो चुनार

0: अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चना 90.4 एफएम।
1: जो चौका उड़ते हुए जाए उसे छक्का कहते हैं।
0: जी हाँ, हाजिर है और जूस लेकर शो। व्हाट्स अप,

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
1: रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर एंजॉय कर रहे हैं आप मजेदार शो व्हाट्सएप। मैं हूं आपका साथी जॉक्स। फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चैनल 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया की किसी भी कोने में। مزید معلومات کے لیے پلیز لاگ ان ٹو www.radiochinar.com اور دل کی دھڑکن ریڈیو چنار سڈیکٹ میرے یار دھڑکاتے رہو۔

0: Kom her, ja.
1: Radio Chennai, Radio Radio Chennai. Weather update, weather update.
2: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम ब्रदर आज का वेदर। जी आज के मौसम का हाल ऑसम और कतई बवाल सब बताएंगे आपको। रेडियो चैनल 90.4 एफएम मैं हूं जॉक्सियस और आइए बताते हैं आपको आज का वेदर क्या कहता है।
1: रेडियो चैनल रेडियो रेडियो चैनल
2: आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 26 अप्रॉक्सिमेटली और वही अगर हम बात करें इट इज मोस्टली सनी फॉर टुडे। और आप जानते हैं मोस्टली सनी का मतलब कि दिन जो है पूरा सनी नहीं होगा बल्कि बादल सूरज के आड़े आ सकते हैं। साथ ही साथ गरज बरस की भी संभावना है, बादल गरज सकते हैं। अब बरसने का यह है देयर इज नो मेजर आउटकम्स फॉर टुडे। UV index week per humidity 71%, wind speed hai 2 kilometers per hour, visibility 4 kilometers, aaj ka sunrise hua 6:32 par, aaj ka sunset hoga 6:04 par. Radio Chennai 90.4 FM, taram pam pam pam pam, bajao, sabko batao, har dil ki dhadkan, zoro se dhadka. Main hoon Jogsu, sidhe hook, dhadkate raho.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Zeus. कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे.
2: व्हाट्सएप पे
3: जहां पर जो होता है वायरल हम पहुंचाते हैं आप तक, क्योंकि कहत ज्ञानी और लोगों ने भी ये बात है मानी कि जानी वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा. जी हाँ, हम सबने खेली है कैंडी क्रश, और कैंडी क्रश इंसान को क्रश कर देती है, क्योंकि कुछ ही लेवल्स के बाद गेम इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि इंसान सोच सोच के परेशान हो जाता है. और अक्सर जब आप किसी को कैंडी क्रश खेलते देखते हैं तो ये सवाल तो बनता है, पूछते हैं सब कि सुकत लेवल पर गेंदा. Well, I have seen some uncles जो कि 2,000-2,500 levels पार कर चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस कैंडी क्रश में जो दिखाई है वो एक बिहार टीनेजर ने दिखाई है. जी हाँ, जिनका नाम शुभम कुमार बताया जाता है, दिगवारा बिहार के रहने वाले हैं और एक माइलस्टोन क्रिएट किया है उन्होंने 5 जुलाई 2026 को. महज 19 साल 8 महीने और 25 दिन के थे जब इन्होंने अचीव की कैंडी क्रश में 22,222वीं लेवल. अब जो कैंडी क्रश खेलते हैं वो जानते हैं कि ये लेवल पार करना, लेवल सबके निकलते हैं लेकिन ये वाला लेवल नहीं, मतलब इतनी दूर कैंडी क्रश में जाना खेलना, भैया ये तो कमाल की बात है. और इस चीज को मैं नहीं कह रहा, कह रहा है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि हाईएस्ट लेवल बताया जाता है कैंडी क्रश सागा का, और ये टीनेजर जो है इसे पार कर चुका है, मतलब पतला सा छोरा और पूरे दुनिया में डिंडोरा. हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी और दिल की धड़कन, मैं हूं जॉग ज्यूस, बने रहें, सुनते रहें, धड़काते रहें.

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
4: रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन शो व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है कीप योर हेड हाई एंड योर एक्सक्यूजेस लो।
5: ये क्या हो गया तुम्हें?
4: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन से रिएक्ट दरगाते रहो।
5: क्यों मौत के बारे में सोच रही थी मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है। और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: मैं हूँ आरजे सिंह। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ¿Cómo la veo?
1: Dios.
0: Radio Channel 90.4 FM, enjoy kar rahe hain Mazdar Show. What's up? Main hoon aapka saathi Jaxis. Jee haan dosto, what's up show. Aap enjoy kar rahe hain har dil ki dhadkan ko, aap bhi dhadka rahe hain aur hamare saath yahan par show ka hissa bane hain Sahil. लिखते हैं साहिल की भाई, ड्राइव कर रहा हूँ और आपका शो सुन रहा हूँ. गाने बहुत ही मस्त हैं, मजा आ रहा है. थैंक यू सो मच इस फीडबैक के लिए. एंड गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड एंड ड्राइव विद सेफ्टी एंड सेंसेस. शबाना हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं, सर पहली बार मैसेज कर रही हूँ, शो में शामिल जरूर करिएगा. आई लव रेडियो चिनार एंड आई लव टीम रेडियो चिनार. थैंक यू सो मच, वी लव यू टू शबाना. अब भी शो का हिस्सा बने 8899904 इज द नंबर 8899904. तो है क्यों कॉल करित व्हाट्सएप या है क्यों करित टेक्स्ट मैसेज. जी आज हम चक्कर लगा रहे हैं अल्पाइन लेक्स, लश मेडोज और हाई अल्टीट्यूड हिमालयन पासेस का. आज बात हो रही है ट्रैकिंग इन कश्मीर. अगर आप भी उन लोगों में से जो हैं जो ट्रैकिंग के दीवाने हैं, ट्रैक पर जाना उन्हें पसंद है, तो आपको बता दूं कश्मीर है ग्रेट लेक्स ट्रैक. अगर हम बात करें तो टूरिस्ट अट्रैक्शन के साथ साथ फॉरेस्ट ब्लॉक्स ये मौजूद है अपने जम्मू कश्मीर में. 7 से 8 दिन का ये ट्रैक कतई डिफिकल्ट बताया जाता है, रीचिंग अप टू 13,715 फीट और पासिंग थ्रू अल्पाइन लेक्स विशनाग सनाग गाडसर नंदकोल एंड गंगबल. दिस कैन मेक यू से वाओ. हर पल लैंडस्केप बदलता रहता है और हर एक पॉइंट के साथ लैंडस्केप का अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा. जो भी लोग इस ट्रैक पर गए हैं उन्हें पता है कि कुदरत का ये अद्भुत नजारा कैसा दिखता है. और अगर आप नहीं गए, दिस इज वन ऑफ द ट्रैक्स यू शुड विजिट. यहाँ गली गली घूमने से क्या होगा, ट्रैक पर जाइए और हमें बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू ट्रैकिंग इन कश्मीर. मैं हूँ जॉक्स ज्यूस, हर दिल

0: मैं हूँ आरजे सूरज।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: Zeus. कौन आया?
1: एंजॉय कर रहे हैं आप हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 FM. मैं हूं आपका साथी Zeus. व्हाट्सअप शो पर आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर के ट्रैक्स की. ट्रैक्स जहां पर ट्रैवलर्स ट्रैक करते हैं और नेचर के क्लोज जाकर, अरे कितने फायदे, यू नो, मेडिटेट करते हैं, अपना सोलेस पाते हैं, अपने आप को जानते हैं, जान पाते हैं, बहुत सारी चीजें और बहुत सारे बेनिफिट्स व्हेन यू आर क्लोज टू नेचर. एंड दीज ट्रैक्स दे जस्ट टेक यू अवे सो क्लोज टू द नेचर कि आप खुद को महसूस कर पाते हैं, अपने दिल की आवाज सुन पाते हैं. फातिमा हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं, फातिमा सर पहली बार मैसेज कर रही हूँ क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है. एंड आई वांट टू से दैट ट्रैकिंग इज इन माय ब्लड. मैंने बहुत सारे ट्रैक्स जो है कवर किए हैं. बस ये जो ट्रैक आपने बताया कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक, वहाँ पर जाने की मेरी तमन्ना है. दुआ कीजिएगा पूरी हो जाए. वी प्रे फॉर यू. एंड डेफिनेटली अगर आप एक ट्रैकर है, पैशनेट है अबाउट ट्रैकिंग, तो जाहिर सी बात है इस ट्रैक पर जाना तो लाजमी है. बाकी क्या कहे, जवान आजमी है, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो, नहीं ख्वाहिशात सारी पूरी हो. थैंक यू सो मच फातिमा हमसे जुड़ने के लिए. जी हाँ, हमने आपको बताया कि क्या है कश्मीर के ग्रेट लेक्स ट्रैक की स्टोरी. अब अगर हम बात करें कुछ और ट्रैक्स की, क्योंकि वक्त जो है पल पल बीतता जा रहा है, तो तासर मासर ट्रैक आप जानते होंगे, 7 दिन का सफर और आरो वैली से होते हुए आलमंड ब्लू और टॉकाइज अल्पाइन्स आपको ले जाते हैं तासर मासर की ओर. और इसके अलावा नारा नाग टू गंगबल ट्रैक, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स, 4 से 5 दिन का सफर. और वही अगर हम देखें तो माउंट हरमुख और ट्वाइन अल्पाइन लेक्स, गंगबल एंड नंदकल. इसके अलावा कितने सारे ट्रैक्स हैं जो ट्रैकर्स कंप्लीट कर चुके हैं या जहां पर जाना चाहेंगे. वर्वन वैली ट्रैक, तुलेल ट्रैक, लेक ट्रैक, और उसके अलावा थाजवस ग्लेशियर ट्रैक, खिलनमर्ग एंड अलपतर लेक, और लिदर ट्रैक. ये कुछ ऐसे ट्रैक्स हैं जहाँ पर जाना ज़रूरी है और इट शुड बी इन द लिस्ट अगर आप ट्रैकिंग के दीवाने हैं तो. बाकी दिल समझे ना समझे, जनाब आप समझा करो. शो व्हाट्सएप का हिस्सा जरूर बने. 8899904904 इज द नंबर. और यहाँ पर बता दूँ आपको, अगली सागात है टेक टॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज. टेकी वर्ल्ड से अपडेट और साथ ही साथ बॉलीवुड की तड़कती फड़कती खबरें आपके लिए. जरा सा इंतजार देते रहें प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार. मैं हूं जॉक्स, धड़काते रहो.

0: हाय मैं हूँ आरजे ज़ू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: News.
1: कौन आया?
2: Bollywood News. Bollywood News. Bollywood News. Bollywood News.
3: दोस्तों रेडियो चैनल 90.4 FM शो व्हाट्सअप शो का सेगमेंट Bollywood News.
2: Bollywood News.
3: जी हाँ, Bollywood News में आइए बात करते हैं God of Music अरिजीत सिंह की. अरिजीत सिंह का टूर अब स्टार्ट भी नहीं हुआ. इट वॉज जस्ट एन अनाउंसमेंट. और 12 मिलियन व्यूज एंड हाफ अ मिलियन लाइक्स बन चुका है नया रिकॉर्ड. जी हाँ, नया रिकॉर्ड फॉर अरिजीत सिंह इंडिया टूर 2027. और इस फ्रीक्वेंसी और दिल की धड़कन बातचीत जारी है. आपकी और हमारी यारी है, 12 तक की पूरी तैयारी है. सुमेरी जान स्टे हट, दिल गाते रहो.

रहती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: you do. Spit it, go on, bad boy of radio, go on, Zeus, go on.
1: आया तो सही लेकिन वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का जाने का. सो फ्रेंड्स आई एम लीविंग यू हियर विद दिस ट्रैक और आपसे जुड़ने आ रही है अर्जित दीवा लेकर शो चिनार बीट्स. एंजॉय करने वाले हैं आप बीट्स ऑन रिपीट. दिस इज बाबा ज़ूस साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. अंटिल वी मीट अगेन, कीप योर हेड्स हाई, वॉक टॉल एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट आई लव यू ऑल. बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मा सलामा.

Yeah.

Beats on repeat show चुनार beats आप enjoy कर रहे हैं only on radio चुनार 90.4 FM. देख सारी बातें क्यों होती है, देखिए मैं हूँ मैं मगर दूर है कहाँ जाने का जरूर, यानी कि यही है आपका और मेरा वो favourite अड्डा जहाँ पर हम करते हैं दे सारी बातें, जहाँ पर से बातें नहीं होती है जहाँ पर जज्बात भी जुड़ते हैं. एंड आई बिलीव कि बहुत सारे ऐसे

होते ज़िंदगी में, उन्हें कोई चाहिए होता है जो उनकी बात सुने, जो उनकी बात आगे पहुंचाए, और मैं बस समझ लीजिए कि वो सांता क्लॉस मैं आपके लिए बन चुकी हूँ। तो जल्दी से बताइए बातें अपनी, और मुझे तो बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। अब आपको कितना मज़ा आता है मुझे बताइए, शो कैसे बन जाइए, बस नंबर वो है जो आपको हमें जोड़ के रखते हो, इतना इजी नंबर है, इजी है नंबर काफ़ी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिंग नंबर है, ये वो नंबर है जो आपको हमें जोड़ के रखता है। सो 8899904904 ये नंबर जो कि आपको हमें जोड़ के रखता है और आपकी बात हम तक, हमारी बात आप तक पहुंचाता है। तो जल्दी से इस नंबर पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और बताइए मुझे कि कैसा मज़ा आया। एंड स्पेशली जब वीकेंड का टाइम होता है ना, सैटरडे बहुत ही सैटरडे वाला फील आता है, तो मुझे बताइए क्या भी वीकेंड के क्या प्लान्स है, मौसम बदल रहा है, एंड आई एम लविंग द वेदर। मुझे बताइए कि आपका वेदर आपको कैसा ट्रीट कर रहा है, क्या आपका फेवरेट मंथ है, क्या आपको इस वेदर में घूमना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, बैठना अच्छा लगता है, काम करना लगता अच्छा लगता है। सो ओवरऑल यह चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट करती है इस मौसम के बारे में, और मौसम है औसम और आपकी बातें भी मेरे लिए काफ़ी औसम है। सो बातें बताइए, मुझे बताइए, शो कैसा बन जाइए जल्दी से। हाय, मैं तो नहीं रूठती, अब मेरी वाइब और ट्राइब रूठे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे शो का टाइम में ना वो रेडी होते हैं कि भैया कब आएंगे आप और हम बातें करें, मैं भी रेडी हूँ आपसे बातें करने के लिए, और साथ में चलाऊंगी आपके लिए बैक टू बैक सॉन्ग। ये बंदी गलत नहीं हूँ, बराबर 12 बजे आ चुकी हूँ, हाँ बता देती हूँ, काम करने, और माहौल तो बदल चुका है। वाइब एंड ट्राइब है, बीट्स ऑन रिपीट है, शो चुनार बीट्स है, हॉरस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 91.4 FM।

Beats on repeat show Chunar Beats ab enjoy kar rahe only on Radio Chunar 90.4 FM. Talking about National Highway of Jammu and Kashmir, both sides say traffic allow kiya ja raha hai, aaram se aa sakte hai, ja sakte hai, apne destination tak pahunch sakte hai, but be very cautious, be very careful, subject to fair weather and road conditions ke mutabik hi aap apna plan banaiye aur jo guidelines di gayi hai traffic police ki janib se unhe follow kijiye aur apni travel ko aur bhi smooth banaiye. And also driving as a way, seat belt, ये हमारा फर्ज ही नहीं, ये हमारी सोच बूझ, हमारा विचार, हमारी जिंदगी में हमें और भी सही रास्ते पर ले जाता है. और देखिए, कोई भी खतरा नहीं होता है, वो मोल ही नहीं लेना है, और इन चीज़ों को फॉलो करके हमने अपनी ट्रैवल डेस्टिनेशन को और भी सही बनाना है. सो जरूरी है ये कि जब हम अनयूजुअल कुछ देखते हैं, जब हम मेस देखते हैं ट्रैफिक में, और हम ऐसे लोग भी देखते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस देखते हैं, ये दिल करता है भैया जी ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, और भैया कि भैया जी कि आप ना करो और आप चाहते हो लोगों तक वो बात पहुंचानी, तो जल्दी से अपनी बात मुझ तक पहुँचाई, मैं पहुँचाऊँगी आपकी बात वहाँ वहाँ तक जहाँ जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनार की आवाज़. 8999904904 ये कॉल आप कर सकते हैं यहाँ पर, और हम मेरे साथ जुड़कर बता सकते हैं कितना ज़रूरी है हमने ये समझना कि अगर हम ड्राइविंग एसपीज को फॉलो करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है और क्या मैसेज आती है सोसाइटी में जो नेसेसरी होती है. चार शनिवार तो नहीं हो सकती है, पर ये है कि ये समझ सकते हैं कि आज शनिवार है और शनिवार पे एकदम मूड लाइट हो, गाड़ी चलाने में मज़ा आता है. सुबह ही हमने प्लान बनाया था कि शाम को छुट्टी जब हो जाएगी तो फिर तो सेट है, बॉस अपना प्लान. तो मुझे बताइए आपका प्लान क्या है, और ज़रूरी आपकी मैसेज जो मैं पहुँचाऊँगी हमारे वाइबो ट्राइब तक, तो जल्दी से और फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM का आप हिस्सा बन सकते हैं. जल्दी बताएं शो कैसे बन जाए. आप सुन रहे हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM.

0: ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਖਬਰ ਵਿਸਤਾਰ ਸਨ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਕਿਆ ਅੱਛੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਕਮ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ
1: ਆਜ ਕੀ ਖਬਰ
0: तो ट्रेंडिंग की जहाँ पर बात आती है हर चीज़ तो ट्रेंडिंग है, अभी ट्रेंडिंग ही है। बट क्या कर सकते हैं, अभी ट्रेंडिंग की बात करें तो अभी ट्रेंड एक्सपीरियंस कर रहा है मैसिव कल्चरल रिवाइवल अक्रॉस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड दैट इज कव्वाली। देखिए कव्वाली

माली का ट्रेन काफी बच चुका है, तो चाहे हम जो ओएसटी जो ड्रामास हैं उनकी बात करें, या फिर उसके अलावा दर निजात का भी भूत जो सवार है पूरी हमारी ऑडियंस पे, यानी मर्द हजरात से लेकर हमारी खवातीन हजरात, हर कोई बोलता है ये दर निजात का एपिसोड कब आएगा। सो पीपल आर टू मच इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ जॉनरा म्यूजिक एंड स्पेशली कव्वाली की जहाँ पर बात आती है। दिस जॉनर इज ब्रिजिंग सेंचुरीज एंड ओल्ड मेजिस्टिकल सूफी ट्रेडिशंस विद मॉडर्न पॉप कल्चर एंड दैट इज सो गुड, बिकॉज हम हमेशा कहते थे कि शायद से क्या यार पुराना म्यूजिक जो है ना वो कोई समझ नहीं पाएगा, बट आई बिलीव दैट ये जेन ज़ी जो है दे बिलीव इन फैक्ट्स, दे रिकग्नाइज एवरी काइंड ऑफ जॉनर एंड दे हैव द टेस्ट ऑफ म्यूजिक वट वी कॉल इट, कि नहीं भाई जेन ज़ी को कहाँ आएगा प्रिजर्व करना अपना कल्चर, बट ट्रस्ट मी जेन ज़ी ही है जो इन चीज़ों को समझ पाते हैं। अभी जो ट्रेंड है वो कवाली है, या फिर अगर हम देखिए एल्गोरिथम में आपको सिर्फ दिखाई देंगे अभी शॉर्ट वीडियोस एस्थेटिक वीडियो, लेकिन म्यूजिक होगा हमारा कवाली, हमारे जो ओल्ड सॉन्ग्स होंगे एंड डेफिनेटली जो मूवी प्लेसमेंट्स भी होती है, जो ट्रेंड ग्रो कर रहा है थीम नहीं है सोशल गैदरिंग्स का एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन कि अभी कवाली काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, चाहे फिर हम नुसरत फ़तेह अली खान की बात करें या ओवरऑल जितने भी कवाली जो भी अच्छे अच्छे गाने गाए गए हैं, जो भी कवाली उन्होंने बनाई है उन्होंने लिखी है, उनमें से जो चंक्स हैं वो निकाले जाते हैं एंड दैट इज़ सो गुड। हमारा कल्चर फिर से रिवाइव हो रहा है, हमारा जो हम कह सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं चीज़ें छूट चुकी थी वो फिर से बढ़ रही हैं एंड नई जनरेशन को भी पता है कि म्यूज़िक का टेस्ट क्या है और उन्हें भी समझ आता है कि सही म्यूज़िक आगे कैसे ले जाते हैं। अब आप मुझे बताइए अभी के लिए आप किस चीज़ से ऑब्सेस्ड है, स्पेशली इंस्टाग्राम पे अभी कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करते हैं और बार बार आपके एल्गोरिथम में आता है, आपको बार बार स्क्रॉल करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ क्यों इतनी ट्रेंड है, मुझे बताइए शो कैसे बन जाए 8 4 9 0 4 9 0 4 टेक्स व्हाट्सएप करके शो कैसे बन जाए।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

शो चुनार बीच यानी कि बीच और रिपीट है सारी बातें और क्या कुछ नहीं। देखिए क्या कुछ नहीं है तो बताएंगे आपको, और क्या कुछ है यानी कि बातें ये है कि आप हैं, हम हैं, मौका है, दस्तूर है, बट बातें ये है कि आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10th of October। हर साल इस दिन को मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, यानी कि क्या ज़रूरी है मेंटल हेल्थ जो कि हमारी डिस्टर्ब हो रही है, तो किन चीज़ों से हो रही है और किन चीज़ों पर हमें काम करने की ज़रूरत है, उस चीज़ पर बात हो रही है शो पे। और थीम क्या है, किन चीज़ों पे हमने काम करने की ज़रूरत है और इस साल का क्या है वो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ इस पर हमने काम करना चाहिए, एंड क्या थीम है और कैंपेन्स भी चला रहे हैं लोग अबाउट मेंटल हेल्थ। बट मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई भी वर्क नहीं कर सकता हमारी मेंटल हेल्थ पे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट। अभी शो का हिस्सा बन सकते हैं 8999-0494 पर आप कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं। आप जल्दी से शो का हिस्सा बन जाइए, अपनी राय हम तक पहुंचाएं, हम पहुंचाएंगे आपकी राय वहां वहां तक जहां जहां तक पहुंचती है रेडियो चुनार की आवाज़।

0: देखिए, ये दिल तो पागल है पर हमारे दिल और दिमाग का एक तालमेल होता है. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है एंड लिव्ड एक्सपीरियंसेस हर्ड, रियल वॉइसेस रियल चेंज, ये थीम है. और इस थीम पे आज के दिन पे बात हो रही है. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर अवेयरनेस रेज की जा रही है दैट वी आर कम्युनिटी, ईच अदर वी कैन क्रिएट चेंज, वी कैन रेज रियल वॉइसेस एंड तभी दुनिया में कुछ चेंज आ सकती है.
1: हाय, मैं हूँ आरजे ज्यूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम.
0: अब दिल तो संभल चुके हैं लेकिन ये है कि अभी दिमाग और दिल का तालमेल बढ़ने वाला है. जो म्यूजिक ऑन डिमांड स्टार्ट हो चुका है, आप अपना फेवरेट ट्रैक सुनने के लिए 8999904904 पर कॉल कीजिए. शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाए.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज जे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

0: मदद करने के बजाय आप हमें ऐसे छोड़कर जा रहे हैं।
1: देखिए 20 दिन से हम आपकी मदद ही कर रहे हैं, हम आपको जानते भी नहीं हैं और ना ही आप हमें अपने बारे में कुछ बता रही हैं। यहाँ से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते अपने घर, ये रखिए, ये आपकी हिफाजत करेगा।
0: मैं आपके घर तक आपके साथ चलूं, उसके आगे मैं खुद चली जाऊंगी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दे।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी

भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हेलो, पापा के जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
1: ऐसे कैसे पूछूं तुम्हें, प्यार छूटा नहीं है मेरा।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।
5: तुझे देखा तो ये जाना सनम,
1: आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो टनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चिनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
3: हे मैं हूँ आरजे समानिया।
4: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
5: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
6: रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिले चैन आराम राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना दर्द ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो एक बात, एक बात लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

कष्टी जी चाहे भीगे तेरी चुनरिया चाहे भीगे रे चोली

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना
1: सा

0: सवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना ब...

0: मचाऊंगी शोर, बचाओ ओ मुर्गे, ओ मुर्गे, ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे

0: पी हो चल पीछा छोड़ हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय मुझको बना गए बावरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया ओ सवरिया।

0: के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, तारा जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

फिर मैंने खींचा आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आ हा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: ना यूं ही साथी
1: है बंधी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट एजेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: hey! जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।